नीच कसा जा, कबहु अपकीर्त में आवे, कबहु भला भला कहावे, जो प्रभ राखे तिव ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कबहु है पंडित करे बख्यान, कबहु मन तारी लावे ध्यान, कबहु तड़ तीर्थ इसनान, कबहु से साधक मोह ज्ञान, कबहु कीट हस पतंग होए जिया, अनक जोन पर में परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे नचावे, ज्योतिष पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबहु साध संगति है पावे, उस स्थान से बहुर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग, जो जल में जल आए कटाना, त्यो ज्योति संग ज्योत समाना, मिटके गबन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सद कुरबान। श्लोक सुखी।

जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए, जब वे जाने मैं किस करता तब लव गर्भ जोन में फिरता, जब तारे को बैरी मीत तब लग नहीं चल नाही चीत, जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म रह दह सजाए, प्रभु कृपा से बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छुटे, सहस कटे लह को उठता वै त्रिपत न आवै माया पाशे पावै, अनक भूख बिगया के करे नह त्रिपतावै खाप खाप मरे, बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ फिरते सब काजे, नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पाकी किसे प्राप्त हो।

स्पष्ट भजी। अविनाशी प्रभ मन में राग, मानो की तू प्रीत त्याग, तिसते परे नहीं किस कोए, सर्व निरंतर एको सोए, आपे बिना आपे जाना, गैर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा दान दयाल भगश्यांद, सातरे की चरणी पाओ, नानक के मन ये अनराओ, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सो ही होग, हरन भरन जाका नेत्र भोर, तिसका मंत्र न जाने होर, नंद रूप मंगल सद जाके, सर्व थोग सुनिए करता के, राज में राज, योग में जोगी, तब में तपीसर, कृष्ण में भोगी, त्याय त्याय भगता सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया, जाकी लीला की मिजना है, सगल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोही अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जनदास नाम ते आवे से, ते गुण में जाको परमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए, ऊंच नीच तिसके असान, जैसा जन आवे।

नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहे पूरन सब ठाए, नाना बिद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कट तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत भेद पुराण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे सगले आकार, नाम के तारे पुरियां सब पवन, नाम के संग उदरे सुन सरवण, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रदान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब में समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पात, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब पली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत वचन साधु उपदेश, सत तेज जन जाके हृदय प्रवेश, सत नृत बूझे जे कोए, नाम जपत ताकी गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिष्ट करने हार, अवर न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष पावे सो वरतिया, बिस्मन बिस्म पय बिस्मार, जन बुझिया तिसे आया स्वाद, प्रभु के रंग राजन रहे, गुरु के बचन पदार्थ लय, ओए दाते दुख काटन हार, जाके संग तरे संसार, जन का सेवक सोवट भागी, जन के संग एक लिव लागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। श्लोक आद सच जुगाद सच है फी सच, नानक होसी पी सच, अष्टपदी चरण सत सत परसन हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखण हार, नाम सत सत त्यावन हार, आप सत सत सब तारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभ भगता, सुरत सत सत जस सुनता, बूजन हार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जिन मान्या, करन कनाव तिन मूल पछान्या, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पैते निरपो होए बसाना, जिस ते उपज तिस मैं समाना, वस्त मैले वस्त गडाई, ताको पिन न कह न जाई, बूझे बूझन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी, ठाकर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रभु पालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभु तारा, नानक सो सेवक साथ साथ समारे, अपने जन का परदा ठाके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को देह बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेव किया पद रखे, ताकि गदम कोय न लखे, प्रभु के सेव को न पहुँचे, प्रभु के सेव के ऊँचते ऊँचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दा दृष्ट प्रगटाया, नीकी कीरी में कल रखे, भस्म करे लश्कर कोट लाख, जिसका शासन काटते आप, ताको राख दे कर हाथ, मानस जतन करत भव पात, तिसके कर

आए राजस्थावत्या बैठाए ताको बिघन न लागे कोए जाके हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाव बिन से पूरन होया भगत पाए आत्म परगास तित कर जाए बसे अविनाशी कौ नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यूं रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण उधार अनको पाव न छूटन हारे सिमरत सासत वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सो तमीज कोटम अर बनता इनते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार अस हस्ती हर हथ सवारी झूठा डंप झूठ पसारी जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मातुले आने भगत बिना बो डुबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हार हो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे आप जपो अबरा नाम जपावो हो संत कहत रहत गद पावो सार पूर सत हर को नाओ सहस भय नानक गुन गावत तेरे उतर महल बिनस जाहे हो मैं बिख फैल होए चिंत बसे सुख नाल सास गिरास हर नाम संभाल शार सियान सगली मना साध संग पावे सजतना हर पूंजी संच करो बिहार इहां सुख दरगा जयकार सर्व निरंतर एको देख कौ नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सलाह एक सिमर एको मन आय एक सके गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर हो प्रव्याप अनक विस्तार एक ते पै एक राज पराष्ट गए मंथन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिर

उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर हे सुहाओ नेत्रोपेख दर्श सुख होए मन बिगसे।

जाबे अकारे कछ ना दिसता, पाप पुन तब कहते होता, जब तारी आपन सुन समाद, तब बैर विरोध के संग कमात, जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत, तब हरख सोग कह किसे व्यापत, जब आपन आप आप पार ब्रह्म, तब मोह कहा किसो वत परम, आपन के

तैज सुभाए तब से सगल कहो कि दिठाए। जब आपे आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कद डरे। आपन चल तब कर निहार नानक ठाकर गम उपार। अविनाशी सुख आपने आसन तै जन मरन कहो कहा बिनासन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाश निरजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही चर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जा निर्मल पुरख पुरख पद होता तै बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निहंकार निर्वाण तै कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तै शल शिदर शिदर लगत कहो की। जय जो स्वरूपी जो संग समावे ते किसे भू कवन त्रिपतावे। करन करावन करने हार नानक करते का नाहे सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई

संभेद श्रेष्ठा चरण कमल जाके अनुरूप सबलता सुंदर रूप तन सेवा से परवान अंतरजामी पुर प्रदान जिस मन बसे सो तनिहाल ताके निकट न आवत काल अमर पै अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया सलोका ज्ञान अन्यन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत बैठे नानक मन प्रगास पादी संत संग यंत्र प्रडीठा नाम प्रभु का लागा मीठा ससमग्री एकट माए अनकराना नंदिष्ठाए नौ निधि अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका बस राम सुन समारन तैनाद कह न जाई अचर बंबा तिन देखा जिसाब दिखाए ना तिन्हें सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत कड़ कड़ ब्याव रहा पवंत तरन माए आकाश प्याल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माए चार गुण दे समाए तेते पे नहीं कोठाओ गुर पछाना सो पाओ बेद पाण सिमरन में दे ससि अखरु नत्र में बाणी प्रभ की सब को बोले आपे अडोल ना कबू डोले सर्व कला कर खेले खेल मोल ना पाई है गुण अमोल सर्व जोग में जाची जोत तारे हो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद अर्म का नास नानक तन में बिसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म सजना के हृदय सब धर्म संजना सुने सो बचन सर्वव्यापी राम संग्रहन जिन जाता तिस की ये रहत सत मन साधु सब कहत जो जो हो सो सो मन कन ग्राउण आप प्रभ जान अंतर वसे बार भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली तिस पावे ते सगली उत पात आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत पात ते पावे ता करे विस्तार ते पावे ता एकंकार अनकला लखी ना जाए जे पावे ते लय मलाए कम निटकन कही है दूर आपे आपा भरपूर है अंतर गज साप जंडाए ना तिजन आप बजाए सर्वभूता वरतारा सर्व नैना पेखनारा सग समागरी जा का ताना आपन जा सापी सुना आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सबके मतलब तो रहे जो कहना सो आपे आग्ञा आवे आग्ञा जाए नानक जा पावे तां ले समाए इस ते हो सो नाही बुरा उरे कहो किने किस करा आप ला करतूता निकी आपे जाने अपने जी की आप साज तारी सा साज ओत पोता पन संगराज ताकि गद में कही ना जाए दूसरो सो जी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक जान जो जाने ते सदा सुख होए आप मलाए ले प्रभ सोए ओ तनवंत कलवंत पतवंत जीवन मोत जिसर दह भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आमन का एह सवाओ जन कह संग चित आवे नाम आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक ते जन

पूरे के गुण गाऊं अष्टपादी। पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निट कर पेख सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनंत्यागो तरंग सिना की तूण मन मांगा छोड़ बेनती करो सास अगन सागर तारो हरदन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे न।

खेम कुशल सहज आनंद सा संप परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गुण अमरस पियो चे चितो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक बाल दमोदर दीन दयाल दो पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमन बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम सो साध के बचन मलीक लार रतन सुंद कमात ओद आधार आप तरे लोके ने सा सफल जी होता का संग हो जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द नहद वाजे सुन सुन करे प्रभु का जे पटे गुवार मात के माते नानक उदरे तिनके साथ है सरन जो सो सरनी आए करके परा मलाए मिटगे बैर पए सब रेन अमर नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण हो सेव की सेव आल जंजाल बकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते पर कर प्रसाद अप्रतारी नान निबेखे बमारी प्रभु की उत करो सन्मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमणी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सोत निदान सर्विशाता की पूर्ण होए प्रदान पुरपर सब लोए सब दूज पाए स्थान बोर्न होवे आवण जान हर दन खाड़ चले जा सोए नान जे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव रिद बोध ज्ञान सर्व ते सिद्ध विद्या तप जो प्रत्यान ज्ञान से उत्तम शनान चार पदार कण प्रगा सबके मसल ते उदास सुंदर जा तत का बेता समदासी है दिलटेता ए फल ते जन के मोह पन है गुरु नानक नाम बचन मन सुने ए निदान जपै मन कोए सब जोग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन भाणी सिमरत शास्त्र वेद बकाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट पराध साध संग मिटै संत

नाम सुखमणि सब ते योच ताकि शोभा बणी नानक ए गुण नाम सुखमणि सुखमणि सुखमणि वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

है कोट पराधी तरियारे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परियारे। वाहिगुरु जी कबीर साधु की संगत रहो।

Satnam. Vaheguru Sahib Ji. Ekyonkar Satnam. Karta Purukh Nirbhau Nirvair. Akal Murt Ajuni Sabhangur Prasad Darshan De Jivangur Tera Oran Karma Hohe Pramera Ihe Benanti Sun Pramere De naam kare apne chehre apni sharan raah prab daate gur prasad kin birle jaate suno bino pra mere meeta charan kamal vasse mere chita nanak ek kare ardaas Visranahi Puran Guntas Darshan Pyasi Dinsarat Chitwanandanit Khol Kabd Gurmeliya Nanak har sang meet sukha hotal gur siviya ahnes sah subahe darshan parsyan guru ka janam maran do jaye hove siv samdi Nuri arson kurson chatiya Todithe sache patisha Mal janam janam di katiya Sajan sacha patisha Sirshaham desha Jis paas baithyaan sohiya Sabnaan da visa sajan sacha paatsha Sirshaan de shah Jis paas baithyaan sohiya Sabnaam da visa satnaam Tan Vaheguru Ji Bihagda Mahala Panjwa Kar Kirpa Gurpar Brahmapure Anadena naam vakhana raham Amrit bani uchraam Har jas mitha lage tera pahana raam Kar kirpa gur parvam pura Andar naam vakhana raam Amrit bani uchraam Har jas mitha lage tera pahana raam Amrit bani uchraam Har jas mitha lage tera pahana raam Kardeya mea Gopal Govinda
कोई नाही तुझ बिना। समर्थ अगत अपार पूर्ण जियो तन तन तुम ना। समर्थ अगत अपार पूर्ण जियो तन तन तुम ना। मूर्ख मुग्ध अनाथ चंचल बालहीन नीचे अजाना। बिनवंत नानक सरण तेरी रख लियो आवन जाना। साधन सरणी पाइए हर जियो गुण गावे हर नीता राम। तूर भगतन की मन तन लागो हर जियो सब पत पनीता राम। पतता पनीत होए तिन संग जिन बदाता पाया। नाम राते जी दाते नित दे चढ़े सवाया। रिद सिद नाम निद हर जप जिन्नी आत्म जीता। बिनवंत नान सदन बिनवंत नान वड भाग पाई है साध साजन मीता। जिनी सच वड़ंजिया हर जियो से पूरे सहा राम। बहुत खजाना तिन पै हर जियो हर कीर्तन लाहा राम। काम क्रोध न लोभ आपै जो जन प्रभ सिउ रातिया। एक जाने एक मन राम के रंग मातिया। लग संत चरणी पड़े सरणी मन तना महा। बिनवत नानक जिन्ना पले सही सचे साहा। नानक सोई सिमरिए हर जियो जाकी कर तारी राम। गुरमुख मनु न विसरे हर जियो करता पुरख मरारी राम। दुख रो न पौ ब्यापै जिन्नी हर हर त्याया। संत प्रसाद तरे पवजिल पूर्व लिखिया पाया। वजी वधाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी। बिनवंत नानक सिमर हर हर इस पुनी हमारी। वजी वधाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी। बिनवंत नानक सिमर हर हर इस पुनी हमारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुरपार बम पूरे अंधे नाम वखाणा राम। अमृत बाणी उचरा हर जस मीठा लागे तेरा पाणा राम। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जय सा सतगुरु सुनिंदा। ऐसो ही मैं डीठ विछड़े हम मेले प्रभु।
हर दरगे का बसीठ, हर नामो मंदड़ाइंदा, कटे हमें रोग, नानक सतगुर के नाम लाया, जिने तुरे प्यास जोग, गौड़ी की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक पूर्ण कबून डोलता, पूरा किया प्रव्याप दिन ने चढ़े सवाया, नानक उतना काट पौड़ी, पूर्ण मां पूर्ण प्रभे करण कार समरथ, जी जन दयाल पुरुषा पुर जा का हथ, गुण दान गोबिंद गुर किया जाका, गुर गो गुण दान गोबिंद गुर किया जाका, होए अंतर जामी प्राप्त जाम अर्ग नरंजन सोए, पार मम परमेश्वर सब जन हार, संत साई सरन जोग आठ पैर नमस्कार, अकात कथा न बूझिय सिमरो हर के चरण, पति दान ना ना प्रभु की शरण सलोक, दो बिन सहसा गए हो सन गई हर राय, मन चिंदे फल पाया नानक कर गुण गाए पौड़ी, कोई गावे को सुने कोई करे विचार, को उपदेशे को दड़े तिसका होए आधार, कोई गावे को सुने कोई करे विचार, को उपदेशे को दड़े तिसका होए आधार, केलवे काटे होए नरमला, जन जन मल जाए हलत पलत मुख उजला, न पोहे तसमाए, सो सूरता सो बैसनो सो ज्ञानी धनवंत, सो सूरा कलवंत सो जिन भजया भगवंत, खत्री ब्राह्मण सूद बै सुधरे सिमर चंडाल, जिन जाने प्रयापण नानत सिर वाल, गौड़ की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला चौथा, सतगुर पुरख दयाल जिनो समसा को, एक देश कर देश दा मन पावनी ते सिद्ध होए, सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पास होए, नान कृपा ते हर त्याई है गुरमो पावे कोहे महला चौथा, होमे माया सब एक है निजा तोटा संसार, लाहार तन कटिया गुरमो शब्द विचार, होमे मैल बेखी उतर हरे अमृत हर उतार, सब कारे तिनके सिद्ध है जिन गुरम कृपा तार, नानक जो तुर मिले सो मिल रहे, हर मिले सिजनहार पौड़ी, तू सचा साहब सच सच सचा गोसाई, तुनु सब त्याय दी सब लगे तेरी पाई, तेरी सिर सवाले सूप है जिनकी तेज पार लगाए, गुरमुखानो फल पाण दास नाम सवाही, वड्डे मेरे साहिबा वड़ी तेरी वड्याई, श्लोक महला चौथा, विड़नावे होर सलाहना सब बोलन फिका साध, मान मोहकार सलाह दे हमें ममतावाद, जैन सलाहन से मरे खब जावे सब वाद, जन नान गुरमोह परे जा पर परमानाद, महला चौथा, सत गुर हर प्रभ दास नाम त्याई मन हरी, नानक नाम पवित हर मुख बोली शब्द पर हरी पौड़ी, तू आपे आप निरंकार नंजन हराया, जिनी तू एक मन साहित आया, तिनका शब्दो गवाया, तेरा सी को नाही जिनो लवे लाए सुनाया, तो वे जे तो जेवड़दाता तू है नन्ना, तू है साब सज मेरे मन पाया, सच्चे मेरे सहबा सच्चे सनाया, श्लोक महला चौथा, मन अंतर में रोग है परम भूले मन मोह दुर्जना, मन मोह अंतर में रोग है परम भूले हो मैं मन मोह दुर्जना, नानक रोग वाए मैं सतगुरु साधु सज्जना, महला चौथा,
मन तरता रंग स्यों गुरमहा गुण तास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर सबास पौड़ी तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी है तुझे उड़ोए सो आखिए तुझे हाथ हुए पड़ी है तू गड़ गड़े कवरदा गुरु प्रगड़ी है तू सच्चा सब सदा खसम है सब दो तू चढ़ी है तू करे सो सच्चे हो सीता कायद करिए श्लोक महला चौथा मैं मानता न प्रेम परम का अठे पैर लगाना जन नानक कृपा तार प्रभु सत गुरु सुख वसन महला चौथा जिन अंदर प्रीत प्रभु की ज्यो बोले न ते सुहन नानक आपे जानदा जिन लाई प्रीत प्रण पौड़ी तू करता आप भोल भुलण विच नाही तू करे सुचे पलास गुरशब बुझाई तू कण कण समरत है दूजा को नाही तू साहिब अगम त्याल है सब तो त्याई सब जी तेरे तू सबदा तू सब छाई श्लोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखे तार लगाना गुर तुठे सजड़ मेलिया जन नानक सुख सवन महला चौथा सतगुरु दादा सतगुरु दाता दयाल है जिनों दया सदा होए अंदरों अन सतगुरु अंदर वैर है सब देखे ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाए दे तेन विचों ते सटिया ना कोई सतगुरु सभना दा भला मनाइंदा सतगुरु सभना दा भला मनाइंदा तिसदा बुरा क्यों होए सतगुरु नूं जिहा को इच्छदा तिहा फल पाए कोई नानक करता सब किछ जानदा जदों के गुजा ना होए पौड़ी जेनू साहब वड्डा करे सोई वड़ जानी जे साहब पावे ते बगले सो साहब मन पानी जे को दी रीस करे सो मुड़ जानी जेनू सतगुर मेले सो गुण रवे गुण आप खानी नान सच्चा साचा बो सत समाणी श्लोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है निर्भो निरवैर जिन जपया एक मन एक चित लथा मैं पार जिन गुरमुख हारे आराध्या तिन संत जना जयकार कोई निंदा करे पूरे सतगुर की तेनों फिट फिट कहे सब संसार सतगुर विच आप करत दार आपे रखण हार तन तन गुरु गुण गावदा जिनों सदा दा नमस्कार जन हन तिन को वारिया जिन जपया सीण हर महला चौथा आपे धरती साजियन आपे आकाश विच आपे जंतो पायन मुख आपे देग राज सब आपे आवरदा आपे गुणतास जनानु नाम त्याए तू सब के लिए कटे तास पौड़ी तू सचा साहब साचा स सचे पावे जो तू सास लांदे ते जम कगड़ नेड़ना आवे तिन कहे मुख दारी उजलै जिन हर हिरदे सचा पावे कुड़ियार पछाण सटियन कूड़ हिरदे महां दो पावे मोह काले कुड़ियारियां कुड़ियार कुड़ोए जावे श्लोक महला चौथा सतगुर धरती धर्म है तिस विच जे हा को बीजे तिहा फल पाए सतगुर धरती धर्म है जिस विच जे हा को बीजे तिहा फल पाए गुरसिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए उन हल पल मोह गुजलिया दरगे सच्ची पहनाए एक ना अंदर खोट नित खोट कमावे ओ जे हा बीजै ते हा फल खाए जां सतगुरु सराब नित कर देखै स्वाद गीर सब उगड़िया आए ओ जे हा चितवे नित हा पाइन ओ ते हो जेह देव जाए नान दुहि श्री खसमा पे वरते नित कर कर वेखे चल सबाए महला चौथा एक मन एक वर्तदा जित लगे सो थाए पाए कोई गल्लां कड़े करेरियां जे करवा थोवे साई खाए बिन सतगुरु सो जी ना पवे अहंकार न विछों जाए अहंकारियां नूं दुख भुख है हथ थडे कर कर मंगाए कूड़ी ठगू ठगी कुजी ना रहे मुलम्मा पा लै जाए
जिस होवे पूर्व लिखिया ते सतगुण मिले प्रव्याय, जो लोहा पारस पेटिए मिल संग स्वर्ण हो जाए। जन नानको प्राप्त तड़ी जो पावे ते चलाए पौड़ी, जिन हर हृदय सेवया तिन हर आप मलाए, गुण की सांझ तिन सो करी सब गुण सब जलाए। औगुण वेकण परण पलरी ते सुचे पाए, बलहारी गुरिया पड़े जिन्हें औगुण मेरे गुण।

पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सचता तिन सच कमाया, सतगुरु मिले सच पाया जिनके हृदय

0: मूरख पंडित हिकमत पूजत संजय करे पिया।
1: धर्मी धर्म करेगा वह मंगे मोख दीवार।

तुमरी गत में तो तुम ही नानक दास। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी क्यों ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भौत जी सहाय वार, श्री भौत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरख है। गुरु नानक लई त्याहे फिरंगत गुरते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है। जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै करनो निध्यावे ताए। सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जीओ। सब थाई होई सहाय दसों बादशाहियों की जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दीदार दत्त अंतर खालस। सब बोलो जी वाह। पंजां प्यारियां चौं सब जादियां चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां शाही सिंघां सिघणियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया तेग चलाई तेग वाही दे के अंडट कीता। तिना गुरम प्यारे सचार की कमाई का ध्यान तरखाल से। सब बोलो जी वाह। जिन्हां सिंह सिंघणियां धर्म सी दिते बांध बांध कटवाए चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल तन चरवाए उबलदिया देगा विच उबाले गए खोपरियां लोहाइया गुरद्वारे की सेवा संभाल ली कुरबानियां कीतियां तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया। असहे ते कहवा सार दे शीदो सिकिद के सांसवास संग नभाई तरमनी हारिया। तिना समोह शहीद सिंह सिंघणियां की कमाई का ध्यान तर खालसे। सब बोलो जी वाह। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे जी का ध्यान तर खालसे। सब बोलो जी वाह। प्रथम खालसे जी की अरदास है जी। सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेतावे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे रियाज दे ते फतेह बिरद की पहज। पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले खालसे। सब बोलो जी वाहिगुरु। सिखां नूं सिखी दान केह दान रह दान बबेग दान वसा दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी के शनान चौंकियां झंडे मुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। खालस जी के बोल बाले खालसे। सब बोलो जी वाह। सिखा दा मन नीवा मत उची मादे राखे आप अकाल पुरख अंतर जामे गुरु गरीब निवास जी पातशाह पन दे सदा सहाय दार पिता जीओ। श्री ननकाणा साहब और गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो पंथ नूं छोड़िया गया सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी। निमाणिया दे माण नताणिया दे ताण ने उट्टिया दे उण आसरन दे आसरे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी आवि दे पार बख्श रहमत कृपा दा सदका मतले सज दीवाना विच आप दी लाही बाणी दे पाठ उपरंत श्री आस सज की वार कीर्तन जी भोग जी की अरदास। भुल जो माफ करनी सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवन। सरबत संगतां दी हाजरी तेल फुल पेटावां अपने दर ते प्रवान करनिया दरों करों सिखी सिद्ध भरोसा नामदान बख्शना परिवारों में सुख वरता सरबत संगत के कारोबार की बरकतां बख्शिश करनी है। पंथ के सिर ते मेहर भरिया हथ रखना दरों करों साहिबा फरांको सिंह परिवार की सुख शांति तंदुरुस्ती चढ़ती कला अते आप दे दरों करों सुहाग जुड़ा बच्चे की दात की जाचना करदिया होया आप दे चरणा विच परिवार के वाधे लिए अरदास बेनती करते हैं। मेहर करनी सिर ते मेहर भरिया हथ रखना परिवार में सुख वरता चढ़दियां कला बख्शिश करनिया अते अपने दरों घरों दाता जी परिवार जी वादा बख्श के बच्चे की दात बख्श ली दाता जी वांग संग सहाई के वरतना फुलां चुकाना चितारनिया पवित्र हजूरी विच कड़ा प्रसाद देगा हाजरा दार प्रवान होवै प्रवान दे संद वरताउण दी आग्या बख्शो। बीबी बलजीत कौर समूह परिवार वालों दाता जी परिवार की इस्तफा बेतफा की आने वाले समय

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंत की बार नहीं कश तेरा रहाओ। अनेक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली। चोआ चंदन मर्दने अंगा,

सतगुरु का बचन है, मेरी सुरत विच थोड़ा जिहा विसर गया। उत्थे बाबे ने आख्या सी कि जिवें जिहड़ा राजा हुंदा उहनूं इह हुंदा आ मेरा राज है, आ इहदी बाउंडरी है, ते जे हुण नाल दा राज वी मैनूं मिल जावे ते फिर मैं टिका विच आ सकदा। जे आपां ट्रंप की गल कर रहे हां, कित्थे अमेरिका ते कित्थे ईरान, कित्थे अमेरिका ते कित्थे ईरान, कित्थे चाइना, कित्थे रशिया, सबर आ गया। वो कित्थों कित्थों की जंग कित्थे जाके लड़ रहा बंदा, मिडल ईस्ट दे विच हुण कित्थे जाके जंग लड़ रहा बंदा, बाउंडरी तो उहदी इत्थे है, पर उहनूं इह है भी मेरी सरदारी इत्थे भी चलनी चाहीदी है। भी जे एडे वड्डे मुल्क विच सरदारी करके अमेरिका वर्गे मुल्क विच उहदा हैड हो के जे तेनूं सबर नहीं आया, तो जे मान लो सारी दुनिया का राज भी तेरी झोली च होवे तो फिर की हो जाना, कोई फर्क नहीं पैना तेरा। यह सारे की कहानी है अपनी। सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं। महाराज कहते पुत्र कलत्र उर्जो जान मेरी, ओ बिन सह हुए पस मैं ढेरी। आख्या जिन्हां विच तू उलझिया फिरदा, चाहे धियां पुत्र ने चाहे परिवार है, जिन्हां की खातर कई पाप भी कमाउंदा है, आख्या उन्होंने भी बिनस जाना, तू ही खाक की ढेरी होकर रह जाना। इस करके बिन हर भजन देखो बिलला, जे तेरे को चंगी विचार नहीं हैगी तो तू विलकदा ही मर जाना। चंगी विचार नहीं हैगी, चंगे गुण नहीं है, जेडे चंगे वर्च्यू ने जे लाइफ में वो नहीं है, तो तेनू कुछ भी मिली जाए तू तो भी विलकद ही रहना, तो भी तड़फद ही रहना, तो भी तेरे अंदर टिका नहीं आ सकता, तो भी टिका नहीं। बिन हर भजन, महाराज गुरु अर्जन साहब कहते ने रब दे भजन तो बिना, रब का भजन की हुंदा, रब की बंदगी की हुंदी है। गुरु साहब जेडे वर्च्यू दसते ने बाणी विच उन्हां नूं लाइफ विच इंप्लीमेंट करेगा तो सुख आएगा, अदरवाइज जे तेनों यह लगता है आ रूप नहीं अज, मतलब जे लगता है भी आ रूप आ धन आ दौलत आ प्रॉपर्टी मिल जाए, फिर आख नहीं विलकदा ही रहना, तू तड़फदा ही रहना। बिन हर भजन देखो बिललाते त्रिग तन, त्रिग का अर्थ हुंदा जी लांत योग, जिन्हों गारबेज कह सकते हैं आपां, त्रिग तन, तेरा तन शरीर लांत योग है, त्रिग तन तेरा जिहड़ा तन है वह भी लांत योग है। त्रिग तन, त्रिग तन माया संगराते, तेरी वह सुरत जिहड़ी केवल पदार्थां दे नाल ही रत्ती हुई है, बाबे ने आख्या लांत है, लांत है, क्योंकि तेनूं तेरी खेड ऐसी है। इको शब्द इको बचने दे विचों एग्जाम्पल दवांगा, बाबे ने आख्या ज्यों राखा खेत उपर पराए, सवेरे भी उदाहरण दित्ती सी, जिवें ना किसे दा कोई फार्म होवे ते उत्थे उहने इक नौकर रख्या होवे ते बंदा उहनूं कहे वी आह जिन्नी प्रॉपर्टी दिख रही है ये सारी अपनी है ते तूं इहदी अज तो रखवाली करनी है, भी तेरे हवाले है। अच्छा मालक अपने घर आ गया, वह सरी च आ गया, फार्म उहदे एपिसोड सी, हुण जिहड़ा उत्थे नौकर तुरिया फिरदा ना वह एवें खुश हो जा रहा, एवें लागे नहीं लगन दिता किसी नूं। ते एक दिन उस मूर्ख नूं ये नहीं पता भी तू इहदा मालक नहीं हैगा, जिदन मालक असली आ गया हो सकता किसी वेले भी चाबियां मंग के तेनू अपनी डंडी पा दे, राह पा दे। हुण जिन्ना चिर मालक नहीं आउंदा उन्ना चिर तुसीं राखियां दी सिचुएशन वेखो किद्दां दी है, एवें फुली फिरदे ने, मतलब एवें ईगो विच ने। सतगुरु ने एग्जाम्पल दी, आख्या ज्यों राखा खेत उपर पराए, जिवें राखा रखवाली करन वाला पराए खेत दे उपर बैठा होवे, खेत खसम का, खेत ते उस खसम दा जिहड़ा सरी बैठा, तेनू ते उठना ही पैना उत्थों, तेनू ते जाना ही पैना। बाबे ने आख्या दुनिया भी खसम दी है, एवें चीजां दा अहंकार ना कर, तेनू इत्थों जाना ही पैना। दुनिया की कीदी है, रब दी है, खुदा दी है, जो तेरा है, धरतियां इत्थे रह गईयां, सारा कुछ इत्थे रह जाना। खेत खसम का राखा उठ जाए, भाई अज तू बैठा है, गां तेरा पुत ने बहना, फिर पोतरे ने बह जाना, तो फिर हो सकता है पोतरे जुएबाज निकल आउण, तो जुए च सारा कुछ ही हार जाण, कोई होर खसम बन जाए आणखे, कोई जवारी निकल आवे, कोई शराबी कबाबी निकल आवे, कोई नशेई निकल आवे, एक मिनट दे विच जायदाद इदां ही तबाह हो गई, रुल गई सारी। जदों ये चीजां बगानियां होंदियां ना,

तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास। बोलना जी सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासै हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावे ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई हुए सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार का ध्यान धर के। बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हट्टियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देग चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता, तिन्हां प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के। बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणियां धर्म हित शीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े, आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां संग निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के। बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के। बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे। चेतावन का सदका सर्व सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रशिया रियायत, देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले। बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान, दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उची माधा राखा वाहगुरु हे अकाल पुरख, अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब, होर गुरुद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दे दान, खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे माण, नेताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट सच्चे पिता अकाल पुरख, धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जी का कुटान कुटान शुकराना, आप जी ने मेहरमत कीती आप जी की पावन हजूरी विच, दीवान सजे सजे हुए दीवाना विच आप जी की इलाही बाणी दे कीर्तन ढाडी वारा इतिहास दे गायन, उपरंत माइया बीबिया वालों रल मिल के सतगुरु जी आप जी की रब्बी बाणी दे कीर्तन किए गए होइया भुलां दी खिमा बख्शनी मेहर करनी, इसे तरह उद्दम बख्शना पढ़ी सुनी बाणी दा भाव संगत दे हिरदिया ते वसाउणा, संगत दियां तिल फुल पिटावां सेवावां दर ते प्रवान करनियां, सभनां नूं चढ़दियां कला तंदरुस्तियां बख्शनियां, बेअंत अरदास पिटावां नाम आप जानी जाण, सतगुरु सच्चे पातशाह मेहर करनी सभना परिवारां विच आपसी एकता इतफाक भरोसे दियां दातां बख्शणियां, करो किरपा अपने इलाही फरमान बख्श के कृतार्थ करो, अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करने, सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तरनाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या पई अकाल की तबै चलायो, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, गुरु

मन रे संसार अंध गहेरा चहु दिस पसरो है जम जेवरा रहाओ कबित पड़े पड़ कविता मुए कपड़ केदारे जाई जटा तार तार जोगी मुए तेरी गत इन्हे ना पाई दर्ब संच संच राजे मुए गडले कंचन पारी भेद पड़े पड़ पंडित मुए रूप देख देख नारी राम नाम बिन सब बिगुते देखो निरख श्रीरा हर के नाम बिन किन गत पाई कहे उपदेश कबीरा जब जरिए तब होए पसम तन रह किरम दल खाई काची गागर नीर परत है इया तन की है बडाई काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया जब दस मास उर्द मुख रहता सो दिन कैसे फूलिया रहाओ ज्यो मधमाखी त्यों सठो रस जोर जोर तन किया मरती बार लेहो लेहो करिए पूत रहन क्यों दिया देहरी लो बरी नार संग पई आगे सजन सोहेला मरकट लो सब लो कुटंब पयो आगे हंस अकेला कहत कबीर सुनोरे प्राणी परे काल ग्रस कुआ झूठी माया आप बंदाया ज्यों नलनी प्रम सुआ वेद पुराण सब मत सुन के करी क्रम की आसा काल ग्रस्त सब लोग।

दोए दोए लोचन पेखा हो हर बिन और ना देखा नै रहे रंग लाई अब बेगल कहन ना जाए। हमरा परम गया पो पागा जब राम नाम चित लागा रहाओ। बाजीगर डंक बसाई सब खलक तमासे आई बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला। कथनी कह परम ना जाई सब कथ कथ रही लुकाई जाको गुरमुख आप बुझाई ता कदे हृदय रहया समाई। गुर किंचत कृपा किन्नी सब तन मन देहे हर लिनी कहे कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूद के ठाटा समुंद बिलोवन को माटा ताकि हो बिलोवन हारी क्यों मैटे गो छाछ तुहारी। चेरी तू राम ना करस पतारा जग जीवन प्राण अदारा रहाओ। तेरे गलहे तोक पग बेरी तू कर कर रमय फेरी तू अजो नाचे तस चेरी तू जम बपुरी है हेरी। प्रभ कर्ण करावन हारी क्या चेरी हाथ बिचारी सोई सोई जागी जित लाई तित लागी। चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मिटाई सो रस कबीर है जान्या मेरो गुर प्रसाद मन मान्या। जिहो बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन पलो कहां ही मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिय ज्ञान बिचारा निज निरखत गत ब्योहारा रहाओ। कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता इक जाया बिन ठाहर नगर बसाया। जाचक जनदाता पाया सो दिया ना जाई खाया छोड़िया जाए ना मुका ओरन पहे जाना चुका। जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने कबीर है सो तन पाया हर पेड़त आप मिटाया। क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिलियो सोई। हर का नाम ना जपस गवारा क्या सोच हे बारंबारा रहाओ। अंधियारे दीपक चहिए एक बस्त अगोचर लहिए बस्त अगोचर पाई कट दीपक रहे आसमाई। कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मान्या मन माने लोग ना पतीजे तो क्या कीजे। हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बिलोवस पानी काया मांजस कौन गुना जो कट पीतर है मलना रहाओ। लोकी 68 तीर्थ नाई कौरापन तौ ना जाई कह कबीर बिचारी पव सागर तार मुरारी। सोरठ एक ओंकार सत गुर प्रसाद बहु परपंच कर पर तन लियावै सुत दारा पहे आन लुटावै। मन मेरे पूले कपट ना कीजे अंत निबेरा तेरा जी पहली जय रहाओ। छिन छिन तन छीजे जरा जनावै तब तेरी ओक कोई पानियो ना पावै। कहत कबीर कोई नहीं तेरा हृदय राम की ना जपे सवेरा। संतो मन पवने सुख बनया किछ जोग प्राप्त गनया रहाओ। गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंद लिए दरवाजे बाजले अनहद बाजे। कुंभ कमल जल परया जल मेटिया उपा।

भाग सोरठ भूखे भगत ना कीजै यह माला अपनी लीजै हो मांगो संतन रेना मैं नाही किसी का देना। माधो कैसी बनै तुम संगे आप ना देहो ताले वो मंगे रहाओ। दोए सेर मांगो चूना पाओ कियो संग लूना अद सेर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जीवाले। खाट मांगो चौपाई सिरहाना अवर तुलाई ऊपर को मांगो खींदा तेरी भगत करै जन थींदा। मैं ना

राग सोरठ बाणी भगत नाम देव जी की कर दूजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद। जब देखा तब गावा तो जन तीरज पावा नाद समायलो रे सतगुर पेटी ले देवा रहाओ। जह चिल मिल कार दिसंता तह अनहद शब्द बजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी। रतन कमल कोठड़ी चमकार बिजल तही निरै नाही दूर निज आत्मै रहया भरपूर। जे अनहद सूर उजियारा तह दीपक जलै छंछारा गुर प्रसादी जान्या जन नामा सहज समान्या। कर चौथा सोरठ पाड़ पड़ोसन पूछ ले।

ना जाई देख बेडी रहे उस माई हमारे बेडी प्राण अदारा रहाओ। बेडी प्रीत मजूरी मांगे जो को छान छवावे हो लो कुटुंब सबो ते तोरे तो आपन बेडी आवे हो। ऐसो बेडी बरन ना साको सब अंतर सब ठाई हो गुंगे महा अमृत रस चाख्या पूछे कहना जाई हो। बेडी के गुण सुनरी बाई जल्द बांत्रू था प्यो हो नामे के स्वामी सिय बहोरी लंक बबिखण आप्यो हो। सोरठ करती जा अणमड़िया मंदल बाजे बिन सावन कनहर गाजे बादल बिन बरखा होई जो तत बिचारे कोई। मौको मिलियो राम स्नेही जेहे मिलिया देहे सुदे ही रहाओ। मिल पारस कंचन होया मुख मनसा रतन परोया निज पाओ पया प्रम पागा गुर पूछे मन पतियागा। जल पीतर कुंभ समान्या सब राम एक कर जान्या गुर चेले है मन मान्या जन नामे तत पछान्या। राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की एक ओंकार सत गुर प्रसाद। जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही अनल अगम जैसे लहर में उदद जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए ब्रह्म ऐसा जैसा मानिए होए ना तैसा रहाओ। नरपते एक सिंहासन सोया सुपने पया पिखारी अछत राज बिछुरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राजपयंग प्रसंग जैसे है अब कछ मर्म जनाया अनेक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया। सर्व एक अनेक स्वामी सब कट पुगवे सोई कहे रविदास हाथ पै निरे सहजे होए सो होए। जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बाधे अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम आराधे। माधवे जानत हो जैसी तैसी अब कहा करोगे ऐसी रहाओ। मीन पकर फांक्यो अर काट्यो रांध कियो बहु पानी खंड खंड कर भोजन कीनो तौ ना बिसरियो पानी। आपन बापे नाही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संतापा। कहे रविदास भगत एक बाडी अब इहो का स्यों कहिए जा कारण हम तुम अरादे सो दुख अजहू सहिए। दुलो जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अभिबेके राज्य इंद्र समसर गृह आसन बिन हर भगत कहो किह लेख है। ना बिचार्यो राजा राम को रस जिहे रस अनरस बिसर जाही रहाओ। जान अजान पए हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। कहियत आन अचरियत अनकछ समझ ना परे अपर माया कहे रविदास उदास दास मत पर हर कोप करो जिय दया। सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिद कर तलता के। हर हर हरना जपे रसना अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद बिद चौतीस अखर माही ब्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही। सहज समाध उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कहे रविदास प्रगास हृदय तर जन्म मरण पै पागी। जो तुम गिरविर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पे है कचोरा। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे तुम स्यो तोर कमन स्यो जोर हे रहाओ।
जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीर्थ तो हम जाती, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। जय जय जाओ तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और ना देवा, तुमरे भजन कटे जम फांसा, भगत हेत गावै रवे दासा। जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसै बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ। राखो कंद उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा, बंके बाल पाग सिर डेरी, इहो तन होय गो पसम की टेरी। ऊचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कमीनी पांत कमीनी, ओछा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा, राम चंद कहे रविदास चमारा। चमरटा गांठ ना जनी, लोग गठावै पनही रहाओ। आर नहीं जिह तोपो, नहीं रामबी ठाओ रोपो, लोग गंठ गंठ खरा बिगुचा, हो बिन गांठे जाए पहुंचा। रविदास जपै राम नामा, मोहे जम स्यो नाही कामा। राग सोरठ पाणी भगत, भीखन की इक ओंकार, सत गुर प्रसाद। नैनो नीर बहै तनखीना, पय केस दुध वानी, रुंधा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करहे प्राणी। राम राय हुए बैद बनवारी, अपने संतो लेहो उबारी रहाओ। माथे पीर शरीर जलन है, करक करेजे माही, ऐसी बेदन उपज खरी, पई वाका ओ खदनाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल, एहो औखद जग सारा, गुर प्रसाद कहै जन पीखन, पावो मोख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुन पदार्थ पाया, अनेक जतन कर हृदय राख्या, रतन ना छपै छपाया। हर गुण कहते कहन ना जाई, जैसे गुंगे की मिठाई रहाओ। रसना रमत सुनत सुख श्रमना, चित चेते सुख होई, कहो पीखन दोई नैन संतोखे, जे देखा तह सोई। तनासरी महला पहला, कर पहला चौपदे, एक ओंकार सत नाम, करता पुरख निरपो निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी, सह पंगुर प्रसाद। जियो डरत है अपना कैसे।

चोर सवालो चोर सियाणा, खोटे का मोल एको दोगाणा। जे साहित रखिए दीजै रलाई, जापर खिए खोटा हुई जाई। जैसा करे सो तैसा पावे, आ बीज आपी खावे, सी बट भागी आपी खाई। जे सुरत ते हारे जाई, जीसू कुड़िया री कुड़ को बाड़। भावे सब आखू संसार, तुद भावे अंधी परवाड़। नानक जाने जान सुजाड़, तना श्री मल्ला पहला। काया कागद मनो परवाड़ा, सिर कै लिखे ना पढ़े आना।

दयाल दर्शन देहो अपना, ऐसी बख्श करी जय। भणत नानक भरम पट खोले, गुर प्रसादी जानिया, साची लिव लागी है भीतर, सतगुर स्यों मन मानिया। धनासरी महला चौथा, घर पहला चौबदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो हर सेवै संत भगत तिनके सब पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रग संगत तुम जो प्यारी, हर गुण कह न सको बनवारी। हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ। जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी। क्यों कंचन ज्यों कंचन बैसंतर तायो, मल काटी कटत उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर उरतारी। हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर होमै मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। धनासरी महला चौथा, हर के संत जना हर जपियो, तिन का दोग परम पो पागी। अपनी सेवा आप कराई, गुरमत अंतर जागी। हर के नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन भाई। गुरमत हर लिव लागी रहाओ, संत जना की जात हर स्वामी। तुम ठाकुर हम सांगी, जैसी मत देवो हर स्वामी। हम तैसे बुलग बुलागे, क्या हम किरम नान निक कीरे। तुम वड पुरख वडागे, तुमरी गत मित कह न सकै प्रभ। हम क्यों कर मिल है भागी। हर

हर कथा कथा की तनासरी महला चौथा। हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिसके सतगुर बानी। हर के संत सुनो जसकानी हर हर कथा सुनो एक निमख पल सब किलबख पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिन की धूर मंगे प्रभ स्वामी हम हर लोच लोचानी। हर हर सफलो बिरख प्रभ स्वामी जिन जप्यो से त्रिवतानी हर हर अमृत पी त्रिवता से सब लाथी भूख भुखानी। जिनके वड्डे भाग वड ऊचे तिन हर जप्यो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी। तनासरी महला चौथा हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चालै गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता हम लावै आपन पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कह सोई भल मानो हर हर कथा निराली रहाओ। हर के संत सुनो जन भाई गुर सेव हो बेग बेगाली सतगुर सेव खर्च हर बाधो मत जानो आज कह काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपिया से हर हुए हर मिलिया केल किलाली। हर हर जपन जप लोच लो जानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मिलो हम साध जना पगराली। तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पए हर स्वामी हम चातरक बिलल बिललाते हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती हर बिन रह न सको एक राती ज्यों बिन अमले अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ। तुम हर सर्वर अत आगाहा हम लह न सके अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती। हर के संत जना हर जपियो गुर रंग च लूलै राती हर हर भगत बनी अत सोभा हर जपियो उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती। नानक जन तुमरे सरनाई हर राखो लाज पगाती। तनासरी महला चौथा कल जो का धर्म कहो तुम भाई केव छूटै हम छुटकाकी

हम मांगी भगते काकी रहाओ, हर के सेवक से हर प्यारे, जिन जपियो हर बचना की, लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया, सब छुट्टी जम की बाकी, हर के संत जपियो मन हर हर, लग संगत साध जना की, दिनी अर सूर त्रिसनागन बुझानी, शिव चरियो चंद चंदा की, तुम वड पुरख वड अगम गोचर, तुम आपे आप अपाकी, जन नानक को प्रभ कृपा की जय, कर दासन दास दसा की, तनासरी महला चौथा घर पंजवां दोबदे, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, उर धार विचार मुरार रमो रम, मनमोहन नाम जपीने, अदृष्ट अगोचर परंपर स्वामी, गुरपुरे प्रगट कर दीने, राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट, हर संग हरी सत्संग पए, हर कंचन चंदन कीने रहाओ, नव शे खट बोले मुख आगर, मेरा हर प्रभ इवना पतीने, जन नानक हर हिरदय सत्यावो, इयो हर प्रभ मेरा पीने, तनासरी महला चौथा, गुण कहो हर लहो कर सेवा, सतगुर इव हर हर नाम ते आई, हर दरगह पावै फिर जन्म न आवै, हर हर हर जो समाय, जप मन नाम हरे हो सर्व सुखे, हर जस ऊच सबना ते उपर, हर हर हर सेव छडाई रहाओ, हर कृपा निद कीनी गुर भगत हर दीनी, तब हर स्यों प्रीत बने आई, बो चिंत विसारी हर नाम उर धारी, नानक हर भय है सखाई, तनासरी महला चौथा, हर पढ़ हर लिख हर जप गाओ, हर भौजल पार उतारी, मन बचन हर हृदय ध्याए हर, होए संतुष्ट एव भण हर नाम मुरारी, मन जपिए हर दग जगदीश, मिल संगत साधु मीत, सदा आनंद होवे दिन राती, हर कीर्त कर बनवारी रहाओ, हर हर करी दृष्टता भयो मन, उद्दम हर हर नाम जपियो गत भई हमारी, जन नानकी पत राख मेरे स्वामी, हर आए परयो है शरण तुम्हारी, तनासरी महला चौथा, चौरासी सिद्ध बोध ती तीस कोट मुन जन, सब चाहे हर जीव तेरो नाओ, गुर प्रसाद को बिरला पावे, जिन को ललाट लिखिया तुर पाहो, जप मन रामे नाम हर जस उत्तम काम, जो गावे सुने तेरा जस स्वामी, हों तिनके सद बलिहार जाओ रहाओ, शरणागत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम देहे हो सोई हों पाओ, दीन दयाल कृपा कर दे जय, नानक हर सिमरन का है चाओ, तनासरी महला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी, बोलो भाई हर कीर्त हर भवजल तीर्थ, हर दर तिनकी उत्तम बात है संतो, हर कथा जिन जिन हो जानी रहाओ, आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज विडानी, जन नानका मिलाए सुई हर मिलसी, अवर सब त्याग ओहा हर बानी, तनासरी महला चौथा, इच्छा पूर्क सर्व सुख दाता हर, जा कै वस है काम थेना, सो ऐसा हर त्याये मेरे जीअड़े, तां सर्व सुख पावे मेरे मना, जप मन सत नाम सदा सत नाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित त्याये हर पुरख निरंजना रहाओ, जह हर सिमरन भयात है उपाद गत कीनी, वड भागी हर जपना, जन नानक को गुर एह मत दीनी, जप हर भवजल धरना, तनासरी महला चौथा, मेरे साहा में हर दर्शन सुख होए, हमरी बेदन तू जानता साहा, अवर क्या जाने कोई रहाओ, साचा साहिब सच तू मेरे साहा, तेरा किया सच सब

करें एक दात, सब को तुझ ही विच है मेरे साहा, तुझ ते बाहर कोई नाही, सब जी तेरे तू सब सदा मेरे साहा, सब तुझ ही माहे समाए, सब ना की तू आसै मेरे प्यारे, सब तुझे त्यावै मेरे साहा, ज्यों भावै त्यों रख तू मेरे प्यारी, सच नानक के पातशाह। धनासरी महला पंजवां, घर पहला चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, भाव खंडन दुख भंजन स्वामी, भगत वचल निरंकारे, कोट पराध मिटे खिन भीतर, जां गुरमुख नाम समारे, मेरा मन

तेरी भगत सो है दरबारे, सर्व जिया के दाते स्वामी, कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वरना जापै रूप ना लिखी है, तेरी कुदरत कौन बेचारे। जल थल मैयल रविया सर्ब ठाई, अगम रूप गिर धारे। कीर्त करै सगल जन तेरी, तू अविनाशी पुरख मुरारे। ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी, जन नानक सरन द्वारे। तनासरी महला पंजवा, बिन जल प्राण तजे है मीना। जिन जल स्यों हेत बढ़ायो, कमल हेत बिन स्यो है भवरा। उन मार्ग निकस न पायो, अब मन एक स्यों मोहि कीना। मरे न जावे सद ही संगे, सतगुर सबदी चीना रहाओ। काम हेत कुंचर लै फांक्यो, ओ परवस भयो बिचारा। नाद हेत सिर डारे कुरंका, उस हीत बिदारा। दे कुटंब लो मोह प्राणी, माया को लपटाना। अत रचियो कर लीनू अपना, उन छोड़ सरा पर जाना। बिन गोबिंद अवर संग नेहा, ओ जानो सदा दुहिला। कहो नानक गुर एह बुझायो, प्रीत प्रभु सदकेला। तनासरी महला पंजवा, कर कृपा दियो मोहिनामा। बंधन ते छुटकाए, मन ते बिसरियो सगलो धंधा। गुर की चरणी लाए, साध संग चिंत बिरानी छाडी। आहंग बुद्ध मोह मन बासन, दे कर गढ़ा गाडी रहाओ। ना को मेरा दुश्मन रहया, ना हम किसके बैराए। ब्रह्म पसार पसारे भीतर, सतगुर ते सोजी पाए। सब को मीत हम आपन गीना, हम सबना के साजन। दूर परायो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरा राजन। बिन स्यो ढीठा अमृत बूठा, शब्द लगो गुरु मीठा। जल थल महियल सर्ब निवासी, नानक रमैया ढीठा। तनासरी महला पंजवा, जब ते दर्शन भेटे साधु, भले दिन से ओ आई। महा आनंद सदा कर कीर्तन, पुरख बिधाता पाए। अब मोहि राम जसो मन गायो, भयो प्रगास दा सुख मन में। सतगुरु पूरा पायो रहाओ, गुण निधान रिद भीतर वसिया। ता दुख भरम पो पागा, भई प्राप्त वस्ता गोचर। राम नाम रंग लागा, चिंत अचिंता सोच असोचा। सोग लो मोह थाका, हम मैं रोग मिटे कृपा ते। जम ते भये विवाका, गुर की टहल गुरु की सेवा। गुर की आज्ञा भाणी, कहो नानक जिन जम ते काढ़ी। तिस गुर कै कुरबाणी, तनासरी महला पंजवा। जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो विद नीकी खटानी। जी की कै ही पैमानी, अवर जतन कर रहे बो तेरे। तिन तिल ने कीमत जानी रहाओ, अमृत नाम निर्मोल कहीरा। गुर दीनो मनतानी, डिगे न डोले दृढ़ कर रहे। पूर्ण होए त्रिवतानी, होए जो बीज हम तुम कश होते। तिन की बात बिलानी, अलंकार मिल थैली हुई है। ता ते कनक वखानी, प्रगट्यो जोत सहज सुख सुबह। बाजे अनहत बानी, कहो नानक निहचल घर बाध्यो। गुर की ओ बंधानी, तनासरी महला पंजवा। वड्डे वड्डे राजन अर भूमन, ता की त्रिसन ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते, लोचन कशु न सूझी। वेख्या मैं किन ही तृप्त न पाई, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापे। बिन हर कहां आकाही रहाओ, दिन दिन करत भोजन।

अनुगुरु स्वामी मेरे दुतिया भाव निवार, बंधन काट लिहो अपने कर, कबू न आवै हार, तेरी शरण पया हो जीवा, तू समरथ पुरख मेहरबान, आड़ पैर प्रभ को आराधी, नानक सद कुरबान। राग तनासरी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, हां हां प्रभ राख लेहो, हम ते किशु ना होए मेरे स्वामी, कर कृपा अपना नाम देओ रहाओ, अगन कुटम सागर

बिनो हमारे जियो, हर बिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारन तरन हर, अवर जंजाल तेरा काहू न काम जियो। जीवन दे

परम सरण हृदय कमल चरण अवर आसकाश पटल न कीजै सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जाको कृपा कीजै तनासरी महला पंजवा मेरे लाल भलो रे भलो हर मंगना देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन प्राण पत चित राग सगल है मरना रहाओ चंदन चुहारस पो करता नेक बिखिया बेकार देख सगल है फीके एक है गोविंद को नाम निको कैत है साध जन तन धन अपन था प्यो हर जप निमख न जा प्यो अर्थ दर्ब दे कश संग नहीं चलना जाको रे कर्म भला तिन ओट गही संत भला तिन नाही रे जम सतावै साधु की संगना पायो रे परम निधान मिट्यो है अभिमान एक है निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा घर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर प्यारे कल कलेस लोभ मोह महा भाव जल तारे रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरैन चिदारे साध संग जापने संग मन निधान धारे चरण कमल नमस्कार गुण गोबिंद बेचारे साध जना की रेन नानक मंगल सुख सदारे तनासरी महला पंजवा घर अठवां दो बदे एक ओ

लोक पर लोक संग सहाय, जात कत मोहे रखवाले, गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, पाहे न साकै जाले रहाओ, निर्धन को धन अंदले को टिक, मात दूध जैसे बाले, सागर मैं बोहित पायो, हर नानक करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा, भये कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई, नव निध रिध सिद्ध, हर लाग रही जन पाई, संतन को अनद सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का, रव रहिया सर्वठाई रहाओ, ताको कोए ना पहुंचन हारा, जाके अंग गुसाई, जम की त्रास मिटै जे सिमरत, नानक नाम ते आई। तनासरी महला पंजवा, दर्भवंत दर्भ देख गर्भ है, भूमवंत अभिमानी, राजा जाने सगल राज हमरा, त्यों हर जन टेक स्वामी, जे को अपनी ओट समारे, जैसा बित तैसा हुए वरतै, अपना बल नहीं हारे रहाओ, आन त्याग पै एक आसर, सरण सरण कर आए, संत अनगुर है पै मन निर्मल, नानक हर गुण गाए। तनासरी महला पंजवा, जाको हर रंग लागो इस जुग में है, सो कहियत है सूरा, आत्म जने सगल वस्ता के, जाका सतगुर पूरा, ठाकुर गाइये आत्म रंग, सरणी पावन नाम त्यावन, सहज समावन संग रहाओ, जन के चरण वसे मेरे ही अरे, संग पुनीता देही, जन के तूर देहो कृपा निध, नानक कै सुख एही। तनासरी महला पंजवा, जतन करे मानुख डहकावे, ओह अंतर जामी जाने, पाप करे कर मुकर पावे, भी करे निर्वाने, जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर, उत ताकै उतते उत पेखै, आवे लोभी फेर रहाओ, जब लग टूटै नाही मन भरमा, तब लग मुक्त ना कोई, कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई। तनासरी महला।

शुभ नामो गत नामो पत जन के मान जो जो हो ग्रहाओ नाम धन जिस जन कै पालै सोई पूरा सा नाम ब्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा तनासरी महला पंजवा नेत्र पुनीत भये दर्श पेखे माथे परों रवाल रस रस गुणगा वो ठाकुर के मोरा हृदय बसों गोपाल तुम तो

धारी, कर कृपा गुर मेल प्यारे, के सागै प्रभ तुद सा लाही, तुद बिन दूजा मैं को नाही, ज्यों तुद भावै त्यों राख रजाए, नानक सहज भाई गुण गाए। तनासरी महला पंजवां, कर छेवां अष्टपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो जो जूनी आयो तह तह उर जायो, मानस जन्म संजोग पाया, ताकि है ऊट साध राखो देकर हाथ, कर कृपा मिलो हर राया, अनक जन्म भरम थित नहीं पाई, करो सेवा गुर लागो चरण गोविंद जी का, मार्ग देहो जी बताई रहाओ, अनक उपाव करो माया को बचित धरो, मेरी मेरी करत सद ही बिहावै, कोई है सोरे भेटै संत मेरी लाहै सगल चिंत, ठाकर स्यों मेरा रंग लावै, पढ़ै रे सगल भेद न चूकै मन भेद, एक खिन न धीरै मेरे घर के पंचा, कोई है सोरे भगत जो माया ते रहत, एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा, जे तेरे तीर्थ नहाए अहंग बुद्ध मैल लाए, घर को ठाकुर एक तिल न माने, कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद, ज्ञान अंजन मेरा मन इस नाने, सगल असरम कीने मनुआने पतीने, बवेक हीन देही तोए, कोई पाइये रे पुरख बेदाता, पार ब्रह्म कै रंग राता, मेरे मन की दुर्मत मल खोए, कर्म धर्म जुगता निमख न हेत करता, गर्भ गर्भ पड़ै कहीं न लिखै, जिस भेटिए सफल मूर्त करै सदा कीर्त, गुर प्रसाद को नेत्रों पेखै, मन हठ जो कमावै तिल न लेखै पावै, बगल ज्यों ध्यान लावै माया रे तारी, कोई है सोरे सुखैदाई प्रभु की कथा सुनाई, तिस भेटे गत हुए हमारी, सो प्रसन्न गोपाल राय कट रे बंधन माए, गुर कै शब्द मेरा मन राता, सदा सदा आनंद भेटियो, निरपै गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता, सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा रहाओ दूजा, तनासरी महला पहला संत, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, दस पूर्व सदा दसाहरा, हो नाम हर का सदा जांचो, देहो प्रव तरणी तरा, संसार रोगी नाम दारू मैल लागै सज बिना, गुर वाक निर्मल सदा चानन, नित साज तीर्थ मंजना, साज न लागै मैल क्या मल धोइए, गुणै हार परोए किसको रोइए, विचार मारे तरै तारै उल्ट जो नावे, हा पारस परम ध्यानी साज साचे भावे, आनंद अनदिन हरख साचा, दू किलबख पर हरे, सच नाम पाया गुर दिखाया, मैल नाई सच मने, संगत मीत मिला पूरा नावणो, गावे गावन हार शब्द सुहावणो, सलाह साचे मन सतगुर पुनदान दया मते, फिर संग भावै सहज नावै, बेणी ता संगम सत सदे, आराध एक अंकार साचा, नित दे चढ़ै सवाया, गत संग मीता संत संगत, कर नदर मेल मिलाया, कहण कै सब कोई केवड आखी है, हो मूर्ख नीचा जान समझा साखी है, सच गुर की साखी अमृत भाखी, तित मन मानिया मेरा, कूच करै आवै बिखला दे,

सत गुरै सत संगत मिले वडभाग ता हर रस आवै जियो अंदर रह लिव लाए सहज समावै जियो सहज समावै ता हर मन भावै सदा अतीत बैरागी हलत बल सोभा जग अंतर राम नाम लिव लागी हर कसोग दुहां ते मुक्ता जो प्रभ करे सो भावै सत संगत मिले वडभाग ता हर रस आवै जियो दूजे भाई दुख होए मन मुख जम जोहया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहया जियो।

0: ਮਨ ਮੁਖ ਜਮ ਜੋ ਹਿਆ ਜੀਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਹੋ ਮੈਂ ਲਾਏ, ਮੈਲ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜੀਓ, ਸਦਾ ਰਹਿ ਕਰ ਜੋੜ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਇਆ ਜੀਓ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ, ਹੁਕਮ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਆਨ ਦਿਨ ਜਪਤ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮਨ ਭਾਵੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਹੋ ਮੈਂ ਲਾਏ, ਮੈਲ ਹਰ ਪਾਵੈ ਜੀਓ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸ਼ੰਤ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਜੇ ਸੰਗ ਹਰ ਗਾਵੀਐ ਜੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਾਵੀਐ ਜੀਓ, ਭਜ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਰਾਧੂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸੇ।
1: ਨੀਤ ਰਿਆਤਰ ਏਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨੋ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਸਰਬ ਦੁਖ ਭੰਜਨੋ ਜੀਓ, ਦੁਖ ਹਰਤ ਕਰਤਾ ਸੁਖੋ ਸਵਾਮੀ, ਸਰਣ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮਹਾ ਬਿਖੜਾ, ਪਲ ਏਕ ਮਾਹਿ ਤਰਾਇਆ, ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਸਰਬ ਥਾਈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਨੇਤਰੀ ਅੰਜਨੋ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰੀ, ਸਰਬ ਦੁਖ ਪੈ ਭੰਜਨੋ, ਆਪ ਲੀਏ ਲੜਲਾਏ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ਜੀਓ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਨੀਚ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਪਾਰੀਆ ਜੀਓ, ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਵਾਮੀ, ਨੀਚ ਥਾਪਣ ਹਾਰਿਆ ਜੀ, ਜਨ ਸਭ ਵਸ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਤੇਰੀ ਸਾਰਿਆ, ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁਗਤਾ ਆਪ ਸਗਲ ਵਿਚਾਰੀਆ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੀਵਾਂ, ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਬਨਵਾਰੀਆ, ਤੇਰਾ ਦਰਸ ਅਪਾਰ ਨਾਮ ਅਮੋਲੀ ਜੀਓ, ਨਿਤ ਜਪੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਪੁਰਖ ਤੋਲੀ ਜੀਓ, ਸੰਤ ਰਸਨ ਬੂਠਾ ਆਪ ਤੂਠਾ, ਹਰ ਰਸੇ ਸਹੀ ਮਾਤਿਆ, ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਮਹਾਂਪਾਗੇ, ਸਦਾ ਅੰਦਿਨ ਜਾਗਿਆ, ਸਦ ਸਦਾ ਸਿਮਰਤਭਿ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਗੁਣ ਬੋਲੀ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਤੂਰ ਸਾਧੂ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਅਮੋਲਈ, ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੈਂਸ ਸਮਾਨਾ, ਸੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਈ ਰਹਾਓ, ਹਨੁਮਾਨ ਸਰ ਗਰੁੜ ਸਮਾਨਾ, ਸੁਰਪਤ ਨਿਰਪਤ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਜਾਨਾ, ਚਾਰ ਬੇਦ ਅਰ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨਾ, ਕਮਲਾ ਪਤ ਕਬਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨਾ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੋ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਪਗਲਗ ਰਾਮ ਰਹੈ ਸਰਨਾਹੀ, ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਤੇ ਕਰੀਆ, ਆਵ ਕਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਕਾਲ ਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਿਕ, ਜਿਉ ਕਹੋ ਕਵਨ ਬਿਦ ਕੀ ਜੈ, ਸੋ ਦਿਨ ਆਵਨ ਲਾਗਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਾਈ ਸੁਤ ਬਨੇਤਾ, ਕਹੋ ਕਉ ਹੈ ਕਾ ਕਾ ਰਹਾਓ, ਜਬ ਲਗ ਜੋਤ ਕਾਇਆ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਆਪਾ, ਪਸੂ ਨਾ ਬੂਜੈ ਲਾਲਚ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਦ, ਕਾਰਨ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਜੈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਛੋਡੋ ਮਨ ਕੇ ਪਰਮਾ, ਕੇਵਲ ਨਾ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪਰੋ ਏਕ ਹੀ ਸਰਨਾ, ਜੋ ਜਨ ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਛ ਜਾਣੈ, ਤਾਕੋ ਅਚਰਜ ਕਾਹੋ, ਜਿਉ ਜਲ ਜਲ ਮਹਿ ਪੈਸ ਨਾ ਨਿਕਸੈ, ਤਿਉ ਡੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜਲਾਹੋ, ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੈਂ ਤੋ ਮਤ ਕਾ ਪੂਰਾ, ਜੋ ਤਨ ਕਾਸੀ ਤਜੇ ਕਬੀਰਾ, ਰਮਈਏ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰਾ ਰਹਾਓ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਲੋਈ, ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕੋਈ, ਕਿਆ ਕਾਸੀ ਕਿਆ ਉਖਰ, ਮਗਹ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜੋ ਹੋਈ, ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਸਿਵ ਲੋਕੇ ਜੈ ਬੋ, ਓਛੇ ਤਪ ਕਰ ਬਾਹਰ ਐਬੋ, ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾਹੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੀ ਰਹਾਓ, ਸੋਭਾ ਰਾਜ ਬਿਬੈ ਅਭੇ ਆਈ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਲਛਮੀ ਮਾਇਆ, ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕੈਦ ਕਬੀਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕਾਮਾ, ਹਮਰੈ ਮੰਤਨ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮਾ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨ ਬੂੜ ਤੇ ਅਧੇ ਕਾਈ ਰਹਾਓ, ਬਨੇਤਾ ਸੁਤ ਦੇਹੋ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਪਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਇਨਮੈ ਕਛ ਨਾਹੇ ਤੇਰੋ ਕਾਲ ਅਵਧ ਆਈ, ਅਜਾਮਲ ਗਜ ਗਨੇ ਕਪਤਿਤ ਕਰਮ ਕੀਨੇ, ਤੇਉ ਉੱਤਰ ਪਾਰ ਪਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੀਨੇ, ਸੂਕਰ ਕੂਕਰ ਜੋਨ ਪਰਮੇ ਤਉ ਲਾਜ ਨ ਆਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਛਾੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹੇ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਤਜ ਭਰਮ ਕਰਮ ਬਿਦ ਨਿਖੇਦ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਹੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਨ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਰ ਸਨੇਹੀ, तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सत गुर प्रसाद। गैरी करके नीव खुदाई ऊपर मंडप छाए मार कंडे ते को अधिकाई जिन त्रिण तर मुंड बलाए। हमरो करता राम स्नेही काही रे नर गर्भ करत हो बिनस जाए झूठी देही रहाओ। मेरी मेरी कह रो करते दुर्योधन से पाई बारह जोजन छत्र चले थां देही गिरजन खाई। सर्ब सोयन की लंका होती रावण से अधिकाई कहां पयोदर बांधे हाथी खिन में पई पराई। दुर्बासा से करत ठगोरी जादव ए फल पाए कृपा करी जन अपने ऊपर नाम दियो हर गुण गाए। दस बिरागन मोहे बस कीनी पंचो का मिट ना वो सत्र दोए परे अमृत सर बिको मार कटावो। पाछे बहुर ना आवन पावो अमृत बाणी कटते उचरो आत्म को समझाव रहाओ। बजर कुठार मोहे है छीना कर मिन्नत लग पावो संतन के हम उल्टे सेव भगतन ते डर पावो। यो संसार ते तब ही छूटो जो माया नह लपटावो माया नाम गर्भ जोन का तेह तज दर्शन पावो। इत कर भगत करे जो जन तिन पौ सगल चुकाय कहत नाम दियो बाहर क्या परमो यो संजम हर पाय। मार वाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा कर हला ज्यो कुरंक निसनाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया। तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अत रंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ। ज्यो त्रणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवरला ज्यो कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरे मन रामैया। चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसला ज्यों तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया। बारक को जैसे खीर बालहा चात्रिक मुख जैसे जलतरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया। साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे बिल्ले काहू डीठुला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठुला। पहल पुरिये पुंडरक वन्ना ताचे हंसा सगला जना कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसाबरा अथोन पुरसादमरा असगा अस उसगा हरका बागरा नाचे पिंदी मह सागरा रहाओ। नाचंती गोपी जना नैया ते बैरे कन्ना तुर्क न चा पर मैया चा केसवा बचुनी अये मैये एक आन जियो। पेंदी उपकले संसारा परम परम आए तुम चे द्वारा तू कुनरे मैं जी नामा हो जी आला ते निवारणा जम कारणा। पतित पावन माधो बिरद तेरा तन ते वै मन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा। मेरे माथे लागी लै तूर गोविंद चरणन की सुर नर मुंजन तिन्हु ते दूर रहाओ। दीन का दयाल माधो गर्भ पर हारी चरण सरनामा बल तेहारी। तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सत गुर प्रसाद। हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या की जय बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दी जय। हो बलबल जाओर मैया कारने कारण कवन अबूल रहाओ। बहुत जन्म बिछरे थे माधो इहो जन्म तुम्हारे लिखे कहे रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवे लोकनो सरवन बानी सो जस पूर राखो मन सो मधुकर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद सियो जिन कटै मैं तो मोर महंगी लई जीव सटै रहाओ। सा संगत बिना पाओ नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर सियो पैज राखो राजा राम मेरी। नाम तेरो आरती मज्जन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रहाओ। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अंपुला, नाम तेरो चंदनो, कस जपे नाम ले तुझे को चारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाए पयो उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठार सगल जूठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तू ही चवल टोलारे। दस अठा अड़सठे चारे, खानी यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर पोग तुहारे। तनासरी बाणी भगतां की त्रिलोचन, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। नारायण निंदस काय भूली गवारी, दुकृत सुकृत थारो करमरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनार रे, कुल जन्म दे मिलियो सारग पान रे। करम कर कलंक मफी टसरी, विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे। स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे, बादवा करम कर अरुण पिंगुलारी। अनेक पातिक हरता त्रिपवन नाथ री, तीर्थ तीर्थ परमता लहना पार री। करम कर कपाल मफी टसरी, अमृत सस्य तेन लक्ष्मी। कलपत्र शिखर सुनागर नंदी चे नाथं, करम कर खार मफी टसरी। दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले, रावण बणसल बिसल आण तो खिले। हरी करम कर कछुटी मफी टसरी, पूर्व लो कीर्त करम ना मिटैरी। कर गेहन ताचे मोहे जा पीले, राम चे नामंग बदत लोचन। राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमला पति। मंगला हर मंगला नित मंगल, राजा राम राय को रहाओ। उत्तम दियरा निर्मल बाती, तुही निरंजन कमला पाती। रामा भक्त रामानंद जानै, पूर्ण परमानंद बखानै। मदन मूर्त पै तार गोबिंदे, सैन पणै पज परमानंदे पीपा। कायो देवा कायो देवल, कायो जंगम जाति। कायो तूप दीप नहीं बेदा, कायो पूजो पाती। काया भोखंड खोजते नव निद पाई, ना कछ आयबो ना कछ जायबो। राम की दोहाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। पीपा प्रमै प्रमतत है, सतगुरु होए लखावै। धन्ना गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करंते। तिनके काज सवारता रहाओ। दाल सीता मांगो कियो, हमरा खुशी करै नित जियो। पनिया छात निका अनाज मंगो सत सीका। गऊ भैस मंगो लावेरी, इक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी, जन धन्ना लेवै मंगी। जैत श्री महला चौथा, कर पहला चौपदे। इक ओंकार सत गुर प्रसाद। मेरे हीरे रतन नाम, हर बसिया गुर हाथ त्रियो। मेरे माथा जन्म जन्म के, किल बिख दुख उतरे। गुर नाम दियो रिन लाथा। मेरे मन पज राम नाम, सब अर्था गुर पूरे हर नाम। दृढ़ाया बिन नावे जीवन बिरथा रहाओ। बिन गुर मूड पए है मनमुख, ते मोहे माया नित फाथा। नित साधु चरण ना सेवे, कबू तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफल्यो जन्म सनाथा। मोको की जय दासन को, हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधुले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाल हो मार्ग पंथा। हम अंधुले को गुर अंचल दीजै, जन नानक चल हे मिलन था। जैत श्री महला चौथा, हीरा लाल अमोलक है पारी। बिन गाक मिका काखा, रतन गाहक गुर साधु देखियो। तब रतन बिकानो लाखा, मेरे मन गुप्त हीर हर राखा। दीन दयाल मिलायो गुर साधु, गुर मिलिये हीर पराखा रहाओ। मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा, तिन कर रतन ना लाखा। ते उजड़ प्रमुए गवारी, माया पुंग बिख चाखा। हर हर साद मेलो जन्नी के हर साधु शरण हम राखा हर अंगीकार करो प्रभ स्वामी हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाणो तुम वड अगम वड पुरखा जन नानक हर कृपा तारी पाखा डुबत हर राखा। जैत श्री महला चौथा हम बार कछु ना जान हो गत मित तेरे मूर्ख मुग्ध याना हर कृपा तार दी जय मत उत्तम कर ली जय मुग्ध स्याना। मेरा मन आलसिया उगलाना हर हर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट खुलाना रहाओ। गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरे हीरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जी अमली अमल लोबाना। जिनम प्रीत लगी हर केरी तिन तुर पाग पुराना तिन हम चरण सरे वो खिन खिन जिन हर मीठ लगाना। हर हर कृपा तारी मेरे ठाकुर जन बिछरिया चिरी मिलाना तन तन सदगुरु जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुर्बाना। जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर सकर सक फल लागे बा माया भयंकर स्यो है प्राणी गुर बजनी बिसहर काडे बा। मेरा मन राम नाम रस लागे बा हर किए पदित पवित्र मिल साध गुर हर नामे हरस चाखे बा रहाओ। तन तन वड भाग मिलियो गुर साधु मिल साधु लिव उन्मन लागे बा तृष्णा अग्न बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गाए बा। तिनके पाखीन तुर पाए जिन सदगुर दर्स ना पाए बा ते दूजे पाए पवे ग्रब जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाए बा। हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवो हम हर मीठ लगाए बा जन नानक रेण साद पग मांगे हर होए दयाल दवाए बा। जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बस्यो तिन मात की जय हर पांजा तिन सुंगी देहे फिरे बिन नावे ओए खप खप मोए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ। हर कीरत कलजुग पद उत्तम हर पाये सतगुर माजा हो बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन सा मिलियो वड पागी सब किलबिख गए गवाजा सतगुर सा पाया वड दाना हर किए बहु गुण साजा। जिनको कृपा करी जग जीवन हर उर तारियो मन माजा तरम राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। जैत श्री महला चौथा सत्संगत साध पाई वड पागी मन चल तो पयो अरूड़ा अनह तुन वाजे नित वाजे हर अमृत तार रस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा मेरे मन तन प्रीत लगाए सतगुर हर मिलियो लाए चपीड़ा रहाओ। साकत बंद पे है माया बिक संचे लाए जकीड़ा हर कै अर्थ खर्च नह साकै जम काल सह सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु बो श्रद्धा लाए मुख तूड़ा हल्त पल्त हर शोभा पावे हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु हम साजना का कीड़ा जन नान प्रीत लगी पग साध गुर मिल साधु पाखान हरियो मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद। हर हर सिमरो अगम अपारा जिस सिमर दुख मिटे हमारा हर हर सतगुर पुरख मिलावो गुर मिलिया सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे हर हर नाम रखो उर तारे हर हर अमृत बचन सुनावो गुर मिलिया प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधो प्राणा मेरे मंतन अमृत मीठ लगाना हर हर दया करो गुर मेलो पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता हर कै रंग मेरा मन राता हर हर महापुरख गुर मेलो गुरु नानक नाम सुख होई राम। जैत श्री महला चौथा हर हर हर हर नाम जपाहा गुरमुख नाम सदा लै लाहा हर हर हर हर भक्त दृढ़ावो हर हर नाम उमा राम। हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा। हर हर हर जस कुमर पाव, मिल सत्संग उमा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लै लाहा। हर हर कृपा तार गुर मेलो, गुर मिलिये हर उमा राम। कर की रजस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गवाहा। मोक उतार कृपा मिलिये गुरदाते, हर नानक भगत उमा राम। जैत श्री महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा। मन राम नाम पीना लै लाहा, खिन खिन भगत करो दिन राती। गुरमत भगत उमा राम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मंतन जीर शब्द लै लाहा। गुरमत पंच दूत वस आवै, मंतन हर उमा राम। नाम तन हर नाम जपाहा, हर गुण गाय सदा लै लाहा। दीन दयाल कृपा कर माधो, हर हर नाम उमा राम। जप जगदीश जपो मन माहा, हर हर जगनाथ जग लाहा। तन तन वड्डे ठाकुर प्रभ मेरे, जप नानक भगत उमा राम। जय श्री महला चौथा, आपे जोगी जुगत जुगाहा। आपे निरपो ताड़ी लाहा, आपे ही आप वर्त, आपे नाम उमा राम। आपे दीप लो दीपाहा, आपे सदगुर समुंद मथाहा। आपे मथ मथ तत् कटाए, जप नाम रतन उमा राम। सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा। हर हर भक्त दड़ी मन पाई, हर हर नाम उमा राम। आपे वडदाना वड साहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा। हर हर दात करो प्रभ पावे, गुण नानक नाम उमा राम। जैत श्री महला चौथा, मिल सत्संगत संग गुराहा। पूंजी नाम गुरमुख वे साहा, हर कृपा तार मधुसूदन। मिल सत्संग उमा राम, हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा। कर कृपा सदगुरु मिलाहा, गुर गाव गुण बोले बाणी। हर गुण जप उमा राम, सब तीर्थ वर्त जग पुन तुलाहा। हर हर नाम ना पूजे पूजाहा, हर अतुल तोल अत पारी। गुरमत जप उमा राम, सब करम त्रम हर नाम जपाहा। किलविख मैल पाप तो वाहा, दीन दयाल हो जन ऊपर देहो। नानक नाम उमा राम। जैत श्री महला पंजवा, कर तीजा इक ओंकार सत गुर प्रसाद। कोई जाने कवन इहा जग मीत, जिस होई कृपाल सोई बिद बुझे। ताकि निर्मल रीत रहाओ, मात पिता बनिता सुत बंदप। इष्ट मीत अर पाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी। अंते को ना सहाई, मुक्त मालक ने कलाल हीरा। मन रंजन की माया, हाहा करत बिहानी। अवदे ता मैं संतोख ना पाया। हस्तरथ असव पवन तेज तनी, पूमन चतुरांगा। संग ना चाल्यो इन में कछुए, ऊट सिदायो नांगा। हर के संत प्रे प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाय। नानक इहां सुख आगे, मुख उजल संग संतन कै पाइये। जय श्री महला पंजवा, कर तीजा दो पदे इक ओंकार सत गुर प्रसाद। देहो संदेशरो कहियो, प्रिय कहियो बिसम पई। मैं बहु बिद सुनते, कहो स्वागन सही हो रहाओ। को कहो तो सब बाहर बाहर, को कहो तो सब महियो। बरन ना दिसे चहन ना लखिये, सुहागन सात बुझहियो। सर्व निवासी

0: लोक रहैया।
1: आखण वाला क्या विचारा, सिफती परे तेरे भंडारा, जिस तू दे तुसे क्या चारा, नानक सच सवारण हराया, सा महला पहला। आखा जीवा विसरे मर जाऊं, आखने औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाय रहाऊ, साचे नाम की तिल वडियाई, आख थके कीमत न पाई।

तुद्बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावै हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुख वासी। से मुकत पए, जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी।